0: प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हें प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं पूर्ण काम है। आप परमधाम जाइए, किंतु वहां पिताजी

শুনলেন রামচরিতমানস পর্ব 258। এখন ভজন, শিল্পী শিপ্রা সাহা।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

0: श्री मोदी ने कहा कि सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer state collaboration. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold of prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्ति

0: प्राधिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच

0: आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रचानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रिको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ एमआरपी। Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is

मीडियम वेव 397.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:51 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

जी हाँ दोस्तों, डाकिया डाक लाया। आज है विश्व डाक दिवस। चिट्ठियों के इंतजार से लेकर आज के डिजिटल तौर तक डाक सेवा ने दूर दराज के गांवों तक संदेश पहुंचाए, पैसा और भरोसा पहुंचाया। आज भी भारतीय डाक अपनी बचत योजनाओं, बैंकिंग, पार्सल सेवाओं, बीमा कंपनियों बीमा के जरिए हर घर से जुड़ा हुआ है। समर्पित डाक कर्मियों को हमारा सलाम। और आज रसधारा में हम डाक दिवस पर बात करने वाले हैं डाक और चिट्ठियों की दुनिया की, साहित्य में पत्र लेखन की, परंपराओं की। तो आज बात होगी चिट्ठियों की, डाक की। सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सविता सभी का स्वागत एक बार फिर करती हूँ कार्यक्रम रसधारा में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, आज है डाक दिवस।

दोस्तों, भारतीय डाक का इतिहास 700 साल से भी पुराना है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दौर से शुरू होकर आधुनिक डिजिटल सेवाओं तक फैला है। यह मध्यकालीन शाही संदेश वाहकों से लेकर स्पीड पोस्ट और ई पेमेंट जैसी सेवाओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क बन गया है। आज भले ही स्मार्टफोन और इंस्टेंट मैसेजिंग के जरिए बातचीत करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन 700 साल पहले भारत का डाक नेटवर्क तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों और ना थकने वाले पैदल दौड़ने वाले इंसान के दम पर चलता था। इतिहास के पन्ने यदि हम पलटाएं तो जानेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी के दौर से शुरू होकर 7 सदियों से भी ज़्यादा पुरानी भारत डाक की जो यात्रा है वो एक अद्भुत और दिलचस्प दौर से गुजरती है। दोस्तों, यूँ तो डिजिटल युग में युवा वर्ग का मैसेज मैनिया या फिर करीब 2 दशक पहले चिट्ठी या खतों का सिलसिला अपनों तक संदेश पहुंचाने का एकमात्र जरिया था। खत बेहतर या मैसेज कमतर, ऐसी ही बातें आज हम करेंगे कार्यक्रम रस धारा में, और सुनेंगे अच्छे खूबसूरत गीत जो कि हमारे फिल्मी दुनिया में लिखे गए पत्रों को लेकर।

जी हाँ दोस्तों, एक वो वक्त हुआ करता था जब पैगाम देने और लेने का ज़रिया सिर्फ और सिर्फ खत होते थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में तुगलक वंश के समय 14वीं सदी के यात्री इब्न बतूता का जिक्र होता है। इब्न बतूता को मध्यकालीन दुनिया के सबसे महान और प्रसिद्ध यात्रियों और खोजकर्ताओं में माना जाता है। इसमें अल बोलक घोड़े पर सवार संदेशवाहक और अल दावा पैदल संदेशवाहक का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती व्यवस्थित डाक नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलती है। 2000 मील तक फैले एक खास घोड़ा डाक सिस्टम को संस्थागत रूप दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान पब्लिक पोस्ट ऑफिस की औपचारिक रूप दिया गया। इसकी शुरुआत 1766 में रॉबर्ट क्लाइव और 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। इसके बाद कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में मशहूर जनरल पोस्ट ऑफिस स्थापित किए गए। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वक्त के साथ सुविधाएं और भी बढ़ी। मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले जी हाँ उस मंजर को देखते हैं जब लंबे इंतजार के बाद किसी के हाथों में जब खत पहुंचता है तो धड़कते दिल से वो किस तरह से दास्तां अपनी सुनाता है।

दोस्तों, साहित्य में पत्र लेखन केवल एक संदेश भेजने का माध्यम नहीं, बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं के साहित्य की एक अत्यंत समृद्ध और मूल्यवान विधा भी है। स्वयं की अभिव्यक्ति होती है। साहित्य पत्र सामान्य पत्रों से अलग होते हैं। इनमें लेखक के निजी जीवन के साथ साथ उसके समय, समाज, दर्शन और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण की गहरी अभिव्यक्ति होती है। ऐतिहासिक संदर्भ पता चलते हैं। प्राचीन काव्य परंपरा जैसे अमीर खुसरो, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, सभी ने के पत्र लेखन के संकेत हमें मिले हैं। पत्र साहित्य के रूप में प्रकाशन भी हमें दिखाई देता है। आधुनिक काल में लेखकों के बीच हुए पत्राचार को बाद में ऐतिहासिक और साहित्यिक दस्तावेज के रूप में पुस्तकों में प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्यकारों ने चिट्ठियां लिखी, कई ऐसे साहित्य इतिहास भी लिखे जो उनके पत्र संग्रह को के रूप में प्रकाशित हुए। जैसे हम बात करें अमृत राय की, जो कि दो खंडों में प्रकाशित हुआ, चिट्ठी पत्री। निराला के पत्र 1971 में प्रकाशित हुए, तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इस नाम से 1971 में हरिवंश राय बच्चन का प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रसाद के नाम पत्र 1976 में प्रकाशित हुआ। वहीं रामधारी सिंह दिनकर के पत्र 1981 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम प्रकाशित हुए। नागार्जुन के पत्र 1987 में, काशी के नाम 2006 में डॉक्टर नामवर सिंह के 364 पत्र प्रकाशित हुए। इस तरह से साहित्य में लेखन की विधा खूब रही और इसकी एक समृद्ध परंपरा भी रही। इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, चिट्ठी आई है और चिट्ठी हमारे जज्बातों को अपने संग में लेकर आई है। साहित्य में पत्रों के लिखने की परंपरा खूब रही। सामान्य पत्र लिखे जाते थे सूचनाएं देने के लिए, हालचाल जानने के लिए, रोज़मर्रा की बातें बताने के लिए। वहीं साहित्यिक पत्र लिखे गए जब लेखक ने अपनी मानसिक स्थिति को, विचारों का आदान प्रदान किया, सृजन प्रक्रिया, उसके पीछे जो लेखन का उसका संघर्ष था उसके बारे में बताने के लिए, वैचारिक मतभेद बताने के लिए और उस युग के साहित्य के आंदोलनों की जीवंत तस्वीर को दिखाने के लिए साहित्यिक पत्र लिखे गए। दोस्तों, आज हमने डाक दिवस पर बात की पत्रों की, पत्रों की दुनिया की, साहित्य में पत्रों के लिखने की परंपरा की, किस तरह से पत्रों ने, डाक ने अपनी एक जर्नी तय की, आज एक डिजिटल युग तक अपने आप को एक साँचे में, नए साँचे में ढाला, हमने बात की इन सब की। फिलहाल के लिए अंतिम गीत पेश करते करते आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी 12 बजे कार्यक्रम सुरभि में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास बोधराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The counting of votes is underway for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha seat in Assam. The five assembly seats where polling was held on Tuesday are Madurankattam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat that went to polls is Nagaon in Assam. In Kerala, India Post will organize a special function and release a special cover to honor Braveheart Indian pilot Captain Smith Machar for saving lives of 174 people on board Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv on 30th of last month. Despite severe wounds, he managed to unlock the cockpit door, allowing passengers and crew to enter, overpower the assailant and safely divert the aircraft to Tabuk, Saudi Arabia, saving the lives of everyone on board. More from our correspondent.
4: Kerala Postal Circle will release a special cover in Thiruvananthapuram today to honor Captain Smith Machar, who displayed exceptional courage and continued to fight despite being stabbed on board a Fly Dubai flight. India Post sources in Thiruvananthapuram said this is the first such honor accorded to Captain Machar in the country. Another special postal cover on the theme Safai Mitras will also be released during the function to honor sanitation workers. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: Embassy of India in Riyadh has issued advisory to Indian nationals residing in Saudi Arabia to remain alert and vigilant and stay indoors as necessary in view of the current situation. In an advisory, the embassy has urged Indian nationals to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events. They have been asked to follow the instructions issued by local authorities through official channels. The Embassy of India in Riyadh and the consulate in Jeddah and its outsourced services through VFS are continuing to function normally. The Trump administration has announced the suspension of a key employment-based green card process for 8 major technology and outsourcing companies, including Indian firms Infosys, TCS, Wipro and HCL. The action also covers Cognizant, Capgemini, Microsoft and Adobe. U.S. Labor Secretary Keith Sonderling said the suspensions followed ongoing federal investigations into the companies. The program, known as PERM PERM, is a key step for employers seeking green cards for foreign workers. Vice President J.D. Vance accused the companies of using the system to replace American workers with lower-paid foreign employees. The administration has not released company-specific findings or details of the alleged violations. U.S. President Donald Trump has honored 6 of America's leading technology pioneers, including Indian-origin Microsoft CEO Satya Nadella, with the country's highest awards for scientific achievement and technological innovation, describing their contributions as central to America's global leadership. At the New Age Golden Age Summit, Trump presented the National Medal of Technology and Innovation to Nadella and Dell Technologies founder Michael Dell. Elon Musk, Google co-founder Sergey Brin, Nvidia CEO Jensen Huang and AMD CEO Lisa Su has received the National Medal of Science. In cricket, India will take on West Indies in the second of the 5-match T20 International Series in Ranchi today. The match will begin at 7 p.m. Indian time. India lead the series 1-0 after winning the opening match with skipper Shreyas Iyer's century, powering the hosts to victory. And that is the end of this news bulletin.
5: আকাশবাণী কলকাতা স্থানীয় সংবাদ পড়ছে সুদীপ বসু। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে ভোট গণনা এগিয়ে চলেছে। সকাল 8টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুটি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো কলকাতা পৌরসভা এলাকায় বকেয়া সম্পত্তি কর মেটাতে ফের চালু হয়েছে ওয়েভার স্কিম বা কর ছাড়ের সুবিধা। আপাতত এই প্রকল্পে আগামী 6 মাস পর্যন্ত ছাড়ের সুবিধা মিলবে। পুরভবনে গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন কলকাতা পৌরসভার কমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পান্ডে।
6: আমাদের এই স্কিমটা ভ্যালিড হবে 6 মাসের জন্য, আগামী 6 মাসের জন্য, দ্যাট ইজ আমাদের 31 মার্চ 2027। ডিপেন্ডিং অপন দ্য সিচুয়েশন আমরা ফার্দার 2 মাস এক্সটেনশন আরও দিতে পারি। এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবিলিটি যেটা লাগবে, যে বিলসগুলো প্রেজেন্টেড হয়েছে আপ টু June 30, 2026, সেই অবধি হবে। রেসিডেন্সিয়াল আর গভর্নমেন্ট প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা 100% ওয়েভার দিচ্ছি অন অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট অ্যান্ড পেনাল্টি। কমার্শিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা 70% ইন্টারেস্ট ওয়েভার দিচ্ছি এবং 99% পেনাল্টি ওয়েভার দিচ্ছি। এবং মিক্সড ইউজ প্রপার্টি, মিক্সড ইউজ মানে যেখানে রেসিডেন্সিয়ালও আছে কমার্শিয়ালও আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারেস্ট ওয়েভার হচ্ছে 80% আর পেনাল্টি ওয়েভার আগেন 99%। এটা 6 মাস অবধি চলবে।
5: উৎসবের মরশুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বিভিন্ন পৌরসভার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ড ও গ্রামগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বরের রোগীদের নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা 10,000 ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বেশি মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মালদা ও পূর্ব বর্ধমান জেলায়। পুজোর মরশুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে একটি মান্য কার্যবিধি সব জেলাশাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, কলকাতার পুর কমিশনার, সব সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারকে পাঠানো হয়েছে। শহরে পুজোয় ডিজিটাল বিজ্ঞাপনে মান্য কার্যবিধি এসবি তৈরির কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভার অনুমতি ছাড়া পুজো কমিটি বা বিজ্ঞাপন সংস্থা ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ব্যবহার করলে দিতে হবে জরিমানা। গতকাল পুরভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান পুরসভার কমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পান্ডে। উল্লেখ্য, পুরসভার অনুমোদন ছাড়াই শহরের কয়েকটি পুজোতে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আসন্ন দুর্গাপুজোয় পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন আগামী 17 থেকে 21 অক্টোবর প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালাবে। ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুর গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে কথা জানান।
7: 25 পেয়ার পূজা স্পেশাল জো হ্যায় জো 402 ট্রিপস হ্যায় ও ইসকে আন্ডার ডিএমই লিস্ট দি হুই হ্যায় 7 লেট নাইট ইএমইউ উইল বি রান বিটুইন 17 এন্ড 21st অফ অক্টোবর বর্ধমান হাওড়া বর্ধমান।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हो, साथ ही इंटरनेट पर डायरेक्टली सर्च करके भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:15 और 44 सेकंड हुए हैं, जो इशारा है आपके मनपसंद उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का, और साथ है आपकी दोस्त तलत सलाहुद्दीन। और एक बार फिर आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब। देख मोहब्बत का दस्तूर, देख मोहब्बत का दस्तूर, तू मुझसे दूर मैं तुझसे दूर। तो दोस्तों, इसी दूरी को खत्म करते हुए देखते हैं कि आज के आईने में हमारे लिए क्या खास है। दोस्तों, पूरा शहर दुल्हन की तरह सजने लगा है, हर तरफ गहमा गहमी और हंसते मुस्कुराते चेहरे। जी हाँ दोस्तों, ये इशारा है बंगाल के सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा का, और पूरे शहर में नहीं पूरी रियासत में इसकी तैयारियां जोरों से जारी है। बाजारों में खचाखच भीड़ और हंसते मुस्कुराते चेहरे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दुर्गा पूजा की आमद आमद है, और कल से ही इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। साथ ही यहाँ बता दूं दोस्तों कि आज रियासत के 2 असेंबली सीटों यानी नंदीग्राम और रेजीनगर में जिमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के सीईओ ऑफिस के मुताबिक सिक्योरिटी सख्त रखी गई है और तमाम तैयारियों के साथ वोटों की गिनती जारी है। आज 9 अक्टूबर है और आज ही के दिन भारत में टेरिटोरियल आर्मी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद 1949 में सी राजा गोपाल आचारी के हाथों टेरिटोरियल आर्मी के बाजाब्ता इफ्तिता की याद ताज़ा करना है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी एक अस्करी रिजर्व फोर्स है जो जुज वक्ती रजाकारों पर मुश्तमल है, और हिंदुस्तानी फौज को मुआवन खिदमात फराहम करती है। इसमें अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान, नॉन कमीशन

मैं पल दो पल का शायर हूँ। दोस्तों आप अभी समाप्त फरमा रहे थे मुकेश की आवाज में साहिर का ये कलाम। आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और फिलहाल वक्त हो रहा है मंजरनामे का। और आज के मंजरनामे में हम बात करेंगे अकलियतों के हुनर पर।

को पूर करना और भारत की तरक्की में अकलियतों की शमूलियत को यकीनी बनाना है। अकलियतों के तहफ़ के लिए अदारे अकलियती अमूर की वजारत 29 जनवरी 2006 को समाजी इंसाफ और तफ़ीज़ अख्तियारात की वजारत से अलग करके कायम की गई थी ताकि अकलियत से मुतल्लिक मसाइल पर तवज्जो दी जा सके। वजारत के मैंडेट में इन फ़र्कों के लिए पॉलिसी वाजा करना, कोऑर्डिनेशन, तश्खीश और तरक्याती प्रोग्रामों की निगरानी शामिल है। अकलियतों के हकूक के मजीद तहफूज के लिए मरकजी हुकूमत ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत अकलियतों के लिए कौमी कमीशन कायम किया। इब्तदाई तौर पर 5 मजहबी फ़र्कों को अकलियतों के तौर पर नोटिफाई किया गया था और 2014 में जैनियों को भी इसमें शामिल किया गया। NCM और रियासती अकलियती कमीशन दोनों आइन और पार्लियामेंट और रियासती लेजिस्लेचर के जरिए वाजा करदा आइन और कानून के मुताबिक अकलियतों के मफादात के तहफ़ुज़ के लिए काम करते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अंजुमन साथ है तलत सलाहुद्दीन और इस स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:39 हुए हैं। दोस्तों आज दिन है जुम्मा और आज के दिन हम आपके लिए बतौर खास लाते हैं साइंस की बातें और आज के इस हिस्से में हम बात करेंगे हमारे कमरे में इस्तेमाल होने वाले साइंस की चीजों पर। दोस्तों हमारे कमरे में हमारे जिंदगी में साइंस का एक अहम किरदार है। सुबह उठते ही निगाहें सबसे पहले जिस चीज को तलाश करती है वो है मोबाइल। भले ही वक्त देखने के लिए हो या मैसेज देखने के लिए, अगर इस दौरान गर्मी का एहसास हुआ तो नजरें एयर कंडीशन की जानिब चली जाती है और कभी बिजली चली गई तो नजरें अपने आप ही पंखे की तरफ चली जाती। कुछ तलाश करना हुआ तो हाथ लाइट्स के स्विच पर चली जाती। रसोई में काम करना हो तो गैस चूल्हा और लाइटर की तलाश शुरू होती। अगर वक्त की बचत करनी हो तो माइक्रोवेव, टोस्टर, वॉशरूम में गीजर, तफरी के लिए टेलीविजन, यानी चार जानेब सिर्फ और सिर्फ हमें साइंस के करिश्मे देखने को मिलते हैं। हमारा कमरा साइंस की तकलीफ के बगैर अधूरा है। दोस्तों हम सुबह उठते ही और आंख खोलते हैं और सबसे पहले खुदरत खाकी हुस्न को निखारते हैं, लेकिन साथ ही गैर इरादी तौर पर जिस चीज पर हमारी जिंदगी मुनसर है या ये कहा जाए कि इसके बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुश्किल है, वो है साइंस। साइंस यूं तो कहने में मैकेनिकी लफ्ज लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसके बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन है। सुबह आंख खुलने के साथ जिस चीज की अश्त जरूरत है वो साइंसी तखलीक है। साइंस हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है और जिंदगी के हर शोबे में, हर कदम में इसका साथ शामिल है। हम इसके इतने आदि हो चुके हैं कि शायद कोई बच्चा भी इससे मुस्तस्ना ना हो। साइंस हमारी जिंदगी का एक अहम लाजमी हिस्सा बन चुकी है। जहां हम जहां भी नजर डालते हैं वहां साइंस की किसी न किसी शक्ल का इस्तेमाल नजर आता है। हमारा कमरा भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। रोशनी, पंखे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, घड़ी, इंटरनेट और दीगर कई चीजें साइंस की तरक्की का नतीजा है। साइंस ने हमारे कमरे को ना सिर्फ आरामदायक बनाया बल्कि उसे तालीम, तफरी और राबते का एक अहम मरकज भी बना दिया है। हमारे कमरे में सबसे बुनियादी सहूलत बिजली है। बिजली की मदद से हम बल्ब और ट्यूबलाइट रोशन करते हैं। आजकल एलईडी बल्ब का भी इस्तेमाल ज्यादा होता है जो कम बिजली खर्च करते हैं। साइंस ने हमें कम तवानाई में बेहतर रोशनी फराहम करने का तरीका बताया। गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर और एयर कंडीशन हमारे कमरे को आरामदायक बनाती है। ये आलात साइंसी असूलों की बुनियाद पर काम करते हैं। पंखा हवा को हरकत देता है जबकि एयर कंडीशन कमरे की गर्म हवा को ठंडा करके दर्जा हरारत को कम करता है। मोबाइल फोन जदीद साइंस की एक बड़ी ईजाद है। हम अपने कमरे में बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद शख्स से बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन के जरिए हम पैगाम भेजते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, खबरें पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में कंप्यूटर और लैपटॉप तालीम और काम के लिए इंतहा अहम है। तुलबा उनके जरिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और मालूम तलाशते हैं और तालीमी मंसूबे तैयार करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग घर के काम भी करते हैं। इंटरनेट और वाईफाई ने हमारे कमरे को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। वाईफाई के जरिए हम चंद सेकंड में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मालूमात हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन किताबें पढ़ने, वीडियोस देखने, तहकीक करने और दूसरों से राबता करने में इंटरनेट का अहम किरदार है। टेलीविजन भी साइंस की एक अहम ईजाद है। इसके जरिए हमें खबरें, तालीमी प्रोग्राम, दस्तावेजी फिल्में और तफरीही प्रोग्राम देखने का मौका मिलता है।

सबसे अहम चीज कमरे में मौजूद घड़ी या स्मार्ट वॉच हमें वक्त की अहमियत का एहसास दिलाती है। जदीद घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती बल्कि तारीख, अलार्म, दर्जा हरारत और बाज़ औक़ात हमारी जिस्मानी सरगर्मियों के बारे में भी मालूमात फराहम करती हैं। फ्रिज और दीगर बर्की आलात, माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर्स, दीगर बर्की आलात मौजूद हैं तो ये साइंस की तरक्की की मिसालें हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे कमरे को ज़्यादा जदीद और सहूलत बख्श फराहम करती है। तालीम में साइंस का किरदार भी अहम है और हमारा कमरा सिर्फ आराम करने की जगह नहीं बल्कि तालीम हासिल करने की भी जगह बन सकता है। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट ऑनलाइन तालीमी प्लेटफॉर्म के जरिए हम घर बैठे दुनिया की बेहतरीन तालीमी मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं। सबसे अहम साइंस और सेहत है और साइंस हमारी सेहत का ख़ास ख्याल रखने में मदद देती है। स्मार्ट वॉच और दीगर आलात हमारे दिल की धड़कन, कदमों की तादाद, नींद और जिस्मानी सरगर्मी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इसके अलावा हवा साफ करने वाले आलात कमरे की हवा के मायार को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। दोस्तों, साइंस का मुस्बत और जिम्मेदाराना इस्तेमाल ने साइंस ने हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाया है लेकिन इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल भी जरूरी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वक्त जाया कर सकता है, हमारी आंखों और नींद पर भी असर डाल सकता है। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी की तालीम को मालूमात और मुस्बत सरगर्मियों के लिए मतवाजन अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि साइंस हमारे कमरे का एक खामोश लेकिन अहम हिस्सा है। रोशनी से लेकर पंखे तक, मोबाइल फोन से लेकर कंप्यूटर तक, इंटरनेट से लेकर स्मार्ट डिवाइसेस तक हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बेशुमार सहूलतें साइंस की मरहूने मिन्नत हैं। साइंस ने हमारे कमरे को सिर्फ रहने की जगह नहीं रहने दिया बल्कि उसे तालीम, मालूमात, राबते, तफरी। इसलिए साइंस का दुरुस्त और जिम्मेदाराना इस्तेमाल हमारी जिंदगी को मजीद आसान, महफूज और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे साइंस की बातें में, हमारे कमरे में साइंस के किरदार पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर, कलाम अंजान, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।

वाकई दोस्तों, कुछ नगमे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह होते हैं जो हमें जिंदगी जीने का सबक दे जाते हैं। आप अभी समाप्त फरमा लेते हैं किशोर कुमार की आवाज में यह नगमा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अरिजीत सिंह को। फिल्म का नाम आशिकी 2, कलाम और मौसिकी दोनों ही मिथुन की है।

दोस्तों सुनते हैं आज के प्रोग्राम का आखिरी नगमा लकी अली और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जिसे लिखा है असलम और मौसीकी है लकी अली और साजिद अली की। इसी साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होगा।

इस नगमे के साथ ही आपकी दोस्त अलस अलाउद्दीन को इजाजत दीजिएगा, मैं फिर हाजिर होंगी कुछ प्यारे नगमों के साथ, कुछ अनोखे वाकयात के साथ। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोपहर के 12:58 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चाएं से। चर्चाएं में आज हम चर्चा करेंगे विश्व पोस्ट दिवस की। दोस्तों आज है विश्व पोस्ट ऑफिस डे। हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। हम सबके घर पर भी पोस्टमैन चिट्ठियां लेकर आते हैं। बर्थडे कार्ड राखियों से लेकर बहुत सी ज़रूरी कागजात हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी आज इंटरनेट ईमेल मोबाइल एसएमएस और कुरियर के ज़माने में पोस्ट ऑफिस का चलन बहुत कम हो गया है। एक वक्त था जब बड़ी बेसब्री से लोग पोस्टमैन का इंतज़ार किया करते थे। उनके इंतज़ार में लोगों की नज़रें अपने दरवाजे पर और कान उनकी आवाज़ों पर टिकी होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोस्टल ऑफिस की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसके माध्यम से हम चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, हम तक चीज़ें कैसे पहुंचती हैं? भारत में अपने यहाँ चिट्ठियों को लाने और पहुंचाने का काम करने वाले डिपार्टमेंट को डाक विभाग कहा जाता है। इसे भारतीय डाक सेवा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय डाक सेवा ने 1 अक्टूबर 2004 को ही अपने सफ़र के 150 वर्ष पूरे किए हैं। अपने देश में 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था स्थापित की थी। फिर 1774 में बारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया। इसके साथ ही चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उस पर लगाए जाने वाले स्टैम्प्स की शुरुआत भी देश में 1852 में हुई। इसके बाद हर शहर और गांव में पोस्ट ऑफिस बनाए गए। बाद में तो इन पोस्ट ऑफिसों में चिट्ठियों को संभालने के साथ साथ लोगों के पैसों को भी जमा करने का काम किया जाने लगा। तो दोस्तों आज विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। आज हमने चर्चाएं में चर्चा की विश्व डाक दिवस की। आइए चर्चाएं में आज हम चर्चा करते हैं भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस की भी। कार्यक्रम सुरभि में आइए हम बात करते हैं भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस की। 9 अक्टूबर 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मना रही है प्रादेशिक सेना। भारत की प्रादेशिक सेना अंशकालिक स्वयंसेवकों का एक सहायक सैन्य संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। इसमें अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, गैर कमीशन अधिकारी और भारतीय सेना के समान रैंक वाले अन्य कर्मी शामिल हैं जिनके पास नागरिक व्यवसाय

ही है। टीए की भूमिका नियमित सेना की स्थिर कर्तव्यों से मुक्त करना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आवश्यक सेवाओं के रख रखाव में नागरिक प्रशासन की सहायता करना और आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के इकाइयां प्रदान करना। भारत की प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य है सावधानी व शूरता। प्रादेशिक सेना अपने वर्तमान स्वरूप में तब अस्तित्व में आई जब 18 अगस्त 1948 को प्रादेशिक सेना अधिनियम लागू किया गया। प्रारंभ में प्रादेशिक सेना में इन्फेंट्री, आर्म्ड कॉर्प्स, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, सिग्नल आपूर्ति और अन्य विभागीय इकाइयां शामिल थीं। इसे औपचारिक रूप से पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी द्वारा 9 अक्टूबर 1949 को उठाया गया था, जिसे तब से प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में सन्स ऑफ सॉइल की अवधारणा पर आधारित होम और हर्थ बटालियन के अलावा भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंटों से संबद्ध कई इकाइयाँ हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के रख रखाव के लिए इंजीनियर टीए बटालियन सेना है तैनात है। प्रादेशिक सेना में 10 पारिस्थितिक टीए बटालियन भी है, जो देश के पारिस्थितिक पर्यावरण की बहाली के लिए बीहड़ और दुर्गम इलाकों में वृक्षारोपण करने, आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करने, जल निकायों को बहाल करने और चेक बांधों का निर्माण करके जल संरक्षण उपाय करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा कुछ टीए बटालियन भारतीय रेलवे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में विशेषज्ञ कार्य भी शामिल करती है। तो दोस्तों, चर्चाएं में आज हमने चर्चा की भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस की भी। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। आइए सुनते हैं एक गीत और इसके बाद हम बात करेंगे पहल की।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ सविता और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम पहल सुरभि में पहल की ओर। आज हम बात करेंगे फ्रेजाइल फाइव की। पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं भारत, इंडोनेशिया, तुर्की, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का एक ग्रुप था। साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनली ने इन पांचों देशों को एक साथ फ्रेजाइल फोर का नाम दे दिया था। फ्रेजाइल फाइव नाम क्यों दिया गया? फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर। साल 2013 के आसपास इन पांच देशों की अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी नाजुक स्थिति से गुजर रही थी। मॉर्गन स्टैनली और अन्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मकसद वैश्विक निवेशकों को चेतावनी देना था। 2013 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हिंट दिया था कि वह उनके यहाँ आने वाले डॉलर के प्रभाव को कम करेगा। इस डर से निवेशकों ने इन पांचों देशों से भारी मात्रा में पैसा निकालना शुरू कर दिया था। नाम देने का मकसद यह दर्शाना था कि अमेरिकी नीति में किसी भी बदलाव का सबसे पहला और बुरा असर इन्हीं पांच नाजुक देशों पर पड़ेगा। भारत अब इस स्थिति से पूरी तरह बाहर आ चुका है। 2013 के बाद से भारत ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जैसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया, महंगाई और चालू खाता घाटे पर कंट्रोल किया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और फ्रेजाइल फाइव के उस दौर को भारत का एक बीता हुआ

वित्तीय संकट माना जाता है। 2013 का फ्रेजाइल 5 टैग, 2014 का मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफ़र भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर को समझने के अहम पड़ाव हैं। तो दोस्तों, पहल में आज हमने बात की फ्रेजाइल 5 की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करते करते आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी फिर ऐसे ही किसी दिन, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Thanks for tuning in. Goodbye. And stay tuned for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार E. विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है, और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय

0: समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
2: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
3: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
4: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন খেয়াল, শিল্পী সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রাগ ভীম পলশ্রী, শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন তরুণ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी द्वारा पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और स्वयं की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस समेत अन्य स्टेशन शामिल है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। उधर रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वनवेव सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही ऑपरेटरों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेस्बोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest of on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from the source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said that this decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. Delhi Metro Rail Corporation is informed that 57 metro stations will be closed from 9 p.m. today till tomorrow due to security reasons in the National Capital Region. These stations include Rajiv Chowk, Lok Kalyan Marg, Central Secretariat, Janpath Patel Chowk, New Delhi Seva Tirth, Mandi House and Janpath. DMRC said that interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. It said that the closure of metro stations will remain in force till further notice.

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है फिलहाल 5:20 और 31 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शुरू हो चुका है आप सभी के लिए कार्यक्रम उर्वशी, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। दोस्तों, फिलहाल कार्यक्रम उर्वशी में आज यानी शुक्रवार की शाम का जो सेगमेंट है यानी सुरुचि लेकर हाजिर हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज हम किस विषय पर करेंगे ढेर सारी बातें, कौन सा टॉपिक है आज हमने चुना। लेकिन इसके पहले आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। देविका के साथ उर्वशी कार्यक्रम जारी है।

तो दोस्तों सुरुचि के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है वो आपको बता दें। फिलहाल तो अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो भी आपको बताना चाहूंगे कि एआर रहमान की आवाज में माही वे फिल्म का नाम था हाईवे। हाईवे फिल्म के इस गीत के साथ साथ उर्वशी सुरुचि का जो टॉपिक है वो आपके सामने गर्मा गर्म पेश कर रही हूँ, क्योंकि आज के विशेष कार्यक्रम में हम बातें करने जा रहे हैं भारत के पूर्वी तट पर बसे एक ऐसे सुंदर राज्य की ओर रुक करके जिसकी पहचान उसके प्राचीन मंदिरों, मनमोहक समुद्र तटों और शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ समृद्ध लोक संस्कृति तो है ही, लेकिन साथ ही उसकी पहचान है वहां का व्यंजन भी। तो दोस्तों जितनी तारीफ मैंने कर दी उसके अनुसार तो आप समझ ही गए होंगे कि किस जगह की बात हो रही है, लेकिन अगर आप न समझे हो तो फिर मैं बता दूं कि आज हम उड़ीसा की ओर करेंगे रुख, क्योंकि आज के कार्यक्रम उर्वशी में सुरुचि के अंतर्गत हम एक ऐसी डिश के बारे में बात करेंगे जो कि है उड़िया डिश, यानी कि उड़िया व्यंजन है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। तो दोस्तों आज हमारी यात्रा जो है उड़ीसा की धरती की ओर तो है ही, साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज हम जिस विषय में बातें करेंगे, जिस व्यंजन के विषय में बातें करेंगे, वो व्यंजन विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, मौसमी सब्जियों की ताजगी भरा होता है और पारंपरिक मसालों की खुशबू के साथ मिलता है। मैं बात कर रही हूँ दालमा की। दालमा एक ऐसा व्यंजन है जिसमें दाल की पौष्टिकता तो होती ही है और हमारे जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, आप जिस सीजन में बनाएं इसे उस सीजन के वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हैं वो भी ताजगी भरती हैं इसके स्वाद में, और परंपरा के मसाले जो हैं वो इसमें खुशबू घोल देते हैं। और दोस्तों आपको ये बता दें कि ये बहुत ही अधिक स्वादिष्ट होता है।

और ना ही ये ज़्यादा मसालेदार होता है और ना ही ये हैवी होता है क्योंकि इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता दें कि उड़िया डिश यानी कि उड़ीसा से जुड़े हुए इस दालमा की रेसिपी जानने से पहले आपको बता दें कि दालमा जो है इस राज्य के प्रमुख व्यंजनों में से एक माना जाता है और इसे दाल के साथ कई तरह की जो सब्जियां होती हैं उसके साथ पकाकर तैयार किया जाता है और चावल के साथ परोसा जाता है। दालमा की खासियत ये होती है कि इसे खाते हुए ऐसा लगता है जैसे कि एक ही कटोरे में खेत तो की हरियाली, घर की रसोई की गर्माहट और पीढ़ियों से चली आ रही पाक परंपरा समा गई हो। तो दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि दालमा की रेसिपी क्या है, इसका इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है और सभी जानने के साथ साथ हम सुनेंगे ढेर सारे खूबसूरत तराने भी। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का अगला तराना आप सभी के लिए पेश है। आप सुन रही हैं 297.4

हम शेयर करने जा रहे हैं उसके बारे में बता दें कि दालमा जो है वो आखिर होता क्या है। तो नाम से ही इसका मूल स्वरूप समझ में आ जाता है कि दाल और दाल से ये बनता है, और दाल और सब्जियों का जो मिश्रण है इसके मेल से बनने वाला ये व्यंजन उड़िया भोजन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और इसकी विभिन्न जो घरेलू विधियाँ हैं उनको अरहर दाल या मूंग दाल का इस्तेमाल कर बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें कद्दू, आलू, कच्चा केला, बैगन, अरबी, कंद और दूसरी जो मौसमी सीजनल सब्जियां होती हैं उनके साथ बनाया जाता है दालमा। दालमा की कोई एक ऐसी विधि नहीं है जो हर घर में बिल्कुल समान हो, हर जगह हर परिवार में थोड़ा अलग अलग तरीके से भी बनाया जाता है इसे, और साथ ही क्षेत्रों के अनुसार भी इसके बनाने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है दालमा जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कुछ लोग इसे गाढ़ा बनाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे थोड़ा पतला बनाते हैं, और कहीं इसे भुने हुए जीरे और लाल मिर्च के छौंक के साथ बनाया जाता है, तो कहीं कसा हुआ नारियल इसकी खुशबू और स्वाद को बढ़ाता है। दालमा का स्वाद बहुत तीखा होता है, और कई बार कुछ लोग जो है वो तीखा नहीं बनाते हैं, तो इसकी पहचान अक्सर हल्के मसाले, पकी हुई दाल, मुलायम सब्जियां और घी के सुगंधित छांक के साथ मिलती है। और साथ ही आपको बताएं कि इसे गर्मा गर्म चावल के साथ खाने पर जो स्वाद आता है उससे तृप्ति ही हो जाती है। दोस्तों कुछ जगहों पर इसे स्थानीय पीठा और बड़े जैसे दूसरे जो व्यंजन हैं उनके साथ भी खाया जाता है, और यही वजह है कि दालमा को समझने के लिए केवल इसके स्वाद को जानना काफ़ी नहीं होता है, उस सामाजिक संस्कृति परिवेश आदि को समझना भी ज़रूरी होता है। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसके व्यंजन की को इस व्यंजन को बनाने की जो विधि है उसमें डेवलपमेंट होता है, उसे अलग तरीके से बनाया जाता है। समय के साथ बहुत सारी अलग अलग विधियां भी इसको बनाने की जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको ये बताएं कि किसी भी एक रेसिपी पे भले ही वो वहाँ का पारंपरिक भोजन क्यों ना हो, लेकिन किसी एक तरह के बनाने की तरीके का उस पर अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। कई तरीके से एक ही रेसिपी बनाई जा सकती है, लेकिन कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट ये ना जानते हुए हमें हर तरीके के व्यंजन को खाकर उसका लुत्फ उठाना चाहिए। दोस्तों फिलहाल आप सभी को बता दें कि अगर आप बनाना चाहते हैं दालमा तो सबसे ज़्यादा सरल तरीका क्या है शाकाहारी दालमा बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दाल और सब्जियां आपको चाहिए होंगी, क्या क्या चाहिए ये आप नोट डाउन कर ले तो बेहतर होगा। अरहर की दाल 1 कप के अनुसार, और साथ ही आलू आप एक मध्यम आकार का ले लें, कद्दू 1 कप कटे हुए टुकड़े, कच्चा केला 1 ले लें, बैगन 1 छोटा सा, अरबी या कोई भी जो स्थानीय सब्जी आपके पास उपलब्ध हो जो ऑप्शनल के रूप में आप ले सकते हैं। साथ ही मसाले की अगर बात की जाए तो आप मसाले में हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तेज पत्ता

सूखी लाल मिर्च एक या दो, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और कसा हुआ नारियल जो कि ऑप्शनल है, ये आप ले सकते हैं। दोस्तों दालमा की यही खासियत है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां हैं वो मौसम और उपलब्धता के अनुसार बदली जा सकती हैं। कद्दू, कच्चा केला, बैगन और जो डिफरेंट टाइप के जो कंद होते हैं वो इससे बनाने के लिए सहायक होते हैं। तो दोस्तों सामग्री की सूची हो गई है तैयार, अब आपके लिए जो बारी है वो ये नोट डाउन करने की है कि आप कैसे बनाएं पारंपरिक उड़िया दालमा की रेसिपी। दोस्तों सबसे पहले दाल की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अरहर की दाल को अच्छी तरह से साफ करके पानी से धो लेना है। यदि समय हो तो इसे लगभग 15-20 मिनट तक आप भिगो कर भी रख सकते हैं। दाल भिगोने से इसका पकने में जो है वो काफ़ी सुविधा होती है और इसके बाद सब्जियों को धोकर आपको मध्यम आकार का जो टुकड़ा है वो कर लेना होगा। फिर आपको ध्यान रखना है सब्जियों के टुकड़े बहुत छोटे ना हों क्योंकि पकने के बाद भी उनका आकार कुछ

0: साथ ही साथ आप बैगन को थोड़ा बाद में डालने का ऑप्शन रख सकते हैं क्योंकि वो अधिक गल जाता है। इसके बाद दाल और सब्जियों को पकाना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक प्रेशर कुकर में मोटे तले वाले बर्तन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर अगर आपके पास है तो आप उसमें बनाएं, नहीं तो आप चाहें तो मोटे बेस वाले बर्तन में बना सकते हैं इस दाल को। तो इसमें आपको डालना है हल्दी, अदरक और आवश्यकता के अनुसार आपको इसमें पानी डालना है। इसके बाद आपको इसमें आलू, कच्चा केला, कद्दू जैसी जो सब्जियां हैं जो सख्त होती हैं उन्हें डाल देना है। बर्तन को ढककर पकाना है या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामग्री को कुकर के अनुसार पकाने तक आप समय दे सकते हैं। दोस्तों, प्रेशर पूरी तरह से निकलने के बाद कुकर को खोलें। यदि बर्तन में बना है तो धीमी और से मध्यम आंच पर पकाएं और बीच बीच में जांच करते रहें कि दाल और सब्जी नरम हुई या नहीं। अब आपको बैगन जैसी जो जल्दी गलने वाली सब्जियां हैं अगर आप वो ले रहे हैं तो उसे डालकर कुछ और देर तक पकाना होगा। फिर दाल पकने के बाद उसमें सब्जियों का स्वाद घुलने लगता है और यही दालमा की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ एक सामग्री अलग से हावी नहीं होती है बल्कि हर सामग्री अपना अपना स्वाद रखकर एक बैलेंस स्वाद बनाती है। दोस्तों, मसालों की अगर बात की जाए तो जब दालमा में आप दाल और सब्जियों को अच्छी तरह से पका लें तो नमक मिलाएं और फिर मिश्रण को हल्के हल्के चलाएं। यदि दालमा बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं और पतला लगे तो बिना ढके कुछ देर धीमी आंच पर पका सकते हैं। इसके बाद आपको चखना भी ज़रूरी है कि दाल जो है वो स्वाद स्पष्ट जो है वो आ रहा है कि नहीं उसका, और साथ ही साथ आपको इसमें जो करना होगा वो है दालमा में छौंक लगाना। तो दोस्तों, मसाले जब है आप डाल ले रहे हैं उसके बाद थोड़ी देर उबालने के बाद आप इसमें थोड़े से जो छौंक है वो डालने के लिए, इसे आप और स्वादिष्ट बनाने के लिए एक छोटे से पैन में घी गरम करें, उसमें जीरा और तेजपत्ता डालें, चाहे तो एक या दो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और फिर जीरे की खुशबू आने लगे तो इस छौंक को सावधानी से दालमा में डाल दें। यदि आपको पसंद है तो ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और कसा हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद जो है वो और इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। घी और जीरे के छौंक दालमा के स्वाद में एक नई गहराई ला देते हैं और दाल और सब्जियों की सादगी के साथ ये खुशबू घुलने लगती है और व्यंजन बन जाता है स्वादिष्ट। दोस्तों, फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना, संजय दत्त के साथ सोनू निगम की आवाज, साथ ही आवाज है सुनिधि चौहान की।
1: अनजान हूं मैं खुद से बेगाना,
2: दर्द से गहरे, सोच से ऊंचे, प्यार से उजले नक्श तुम्हारे जहन में मेरे।

हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

वेल फ्रेंड्स, आज हम बातें कर रहे थे उड़ीसा के दालमा की, और दालमा की रेसिपी भी आपके साथ की मैंने शेयर। और फिलहाल इन सभी के साथ साथ स्टूडियो के घड़ी में समय जो हो चला है वो आपको बता दूं, 5:48:12 है स्टूडियो की घड़ी में समय। और दालमा की रेसिपी के साथ साथ स्टूडियो की घड़ी ये इशारा कर रही है कि अभी आपसे लेना है विदा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम होगा शुरू, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात 6:10 तक पर होगी। और फिलहाल आपको बता दें कि 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संजयिता चैनल। और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और बातें हो रही थी आज दालमा की, जो कि उड़ीसा की रेसिपी है, और उड़ीसा की धरती से आई ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी न सिर्फ एक व्यंजन है बल्कि एक कटोरे में सिमटी एक परंपरा के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक कुंजी भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, ये इतनी खूबसूरत एक डिश है कि इसको बनाने में ना तो ज़्यादा समय लगता है और पौष्टिकता पूरी तरह से भरी रहती है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम उर्वशी में बस इतना ही। उर्वशी के अंतर्गत आप सुन रहे थे सुरुचि, जिसमें आज बातें हुई दालमा की। और फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: is color skin fair mother tongue Bengali is missing since 2nd of September 2026. Shushanto Jana from Maharajganj Police Station Namkhana District South 24 Paganas informs that Kumari Priyashi Jana, aged about 15 years, medium build, height 5 feet 1 inches. Color of skin shallow, mother tongue Bengali, is missing since 31st of August 2026. Amanullah Boydya from Dholahat, District South 24 Paganas, informs that Kumari Alima Khatun, aged about 15 years, medium build, height 5 feet, color of skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 11th of August 2026. And finally, Mohammad Rashid from Howrah informs that Srimati Anna Khatun, aged about 21 years, medium build, height 4 feet 8 inches, color of skin fair, mother tongue Hindi, is missing since 24th of August 2026. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. Now, this evening's program highlight, at 6:10 p.m. from our station, you will listen to our Hindi program. Listen to classical music at 6:30 from our station. At 7:10 p.m. you will listen to a special series on Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's completing 25 years of public service. Listen to Darpan at 7:45 p.m. Those were the programs to be broadcast on this channel later this evening. And now please stand by for the news to be relayed from Delhi in a short while.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Priyanka Arora. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश

0: रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित हैं। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबॉन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Saurav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from the source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said that this decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. Delhi Metro Rail Corporation has informed that 57 metro stations will be closed from 9 p.m. today till tomorrow due to security reasons in the National Capital Region. These stations include Rajiv Chowk, Lok Kalyan Marg, Central Secretariat, Janpath, Patel Chowk, New Delhi, Seva Tirth, Mandi House and Janpath. DMRC said that interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. The Supreme Court has directed the centre and the authorities to ensure that there is no complete suspension of Delhi Metro

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 45 सेकंड। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संजीदा चैनल। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में अब आप सभी के लिए प्रस्तुत है वार्ता। वार्ता के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे डाक एवं संचार सेवाएं बदलते रूप के विषय में, और साथ ही साथ इसके बदलते जो स्वरूप हैं इनके बारे में ढेर सारी जानकारियां आपके साथ करेंगे साझा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बातें करेंगे एक ऐसे विषय में जिसमें न केवल हमारे जीवन को आसान बनाया बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

तो दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं डाक एवं संचार सेवाओं के बदलते रूप के विषय में, साथ ही भारत में संचार के बदलते स्वरूप के विषय में। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस समय की जब किसी दूर बैठे अपने को उनका हाल जानने के लिए हमें कई तरह से कोशिशें करनी पड़ती थी। कई दिनों तक पत्र का इंतजार करना पड़ता था और डाकिया जब गली में आता था तो उसके हाथ में मौजूद चिट्ठियां किसी के लिए खुशखबरी और किसी के लिए भावनाओं से भरा संदेश होती थी, किसी के लिए अपनों से मिलने की उम्मीद लेकर आती थी। तो दोस्तों, फिलहाल आपको बता देते हैं कि समय बदला लेकिन तकनीक भी बदली और साथ ही साथ संचार के साधन भी दिन ब दिन बदलते चले गए। तो दोस्तों, डाक एवं संचार सेवाओं के साथ साथ बदलते भारत में संचार के स्वरूप भी दिन ब दिन बदलते चले गए और इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में भी डाक सेवाओं का महत्व समाप्त नहीं हुआ। आज

डाक विभाग पारंपरिक रूप से जो पत्र वितरण के साथ साथ पार्सल वित्तीय सेवाओं के साथ साथ डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से देश में विकास में योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानते हैं कि डाक एवं संचार सेवाओं ने भारत की यात्रा को किस प्रकार से प्रभावित किया और भविष्य में इनका स्वरूप कैसा हो सकता है। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो संदेश पहुंचाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। प्राचीन काल में ही राजा महाराजा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर पहुंचाते थे, लेकिन इसके साथ साथ समय जब परिवर्तित हुआ, धीरे धीरे मध्य काल में पहुंचने के लिए घुड़सवारों और पैदल संदेश वाहकों और अन्य साधनों का इस्तेमाल भले किया जाता था, लेकिन उस समय संचार जो था वो आज की तरह तत्काल बिल्कुल भी नहीं था, उसमें काफी वक्त लग जाता था। आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास में ब्रिटिश शासन के दौरान कई बदलाव हुए। वर्ष 1854 में भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था से इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया, जब एक संगठित डाक व्यवस्था को नया स्वरूप दिया गया और इसके बाद डाक सेवाएं धीरे धीरे आम लोगों के लिए जीवन का हिस्सा बनने लगीं। पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और पार्सल लोगों के बीच संवाद के प्रमुख माध्यम के रूप में जाने जाने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी पत्रों और संदेशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताओं के विचार, आंदोलन की खबरें और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश लोगों तक पहुंचने में संचार के विभिन्न माध्यम उपयोगी साबित होने लगे। और साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि विशाल भौगोलिक क्षेत्र, विविध भाषाएं, दूर दराज के गाँवों और बड़ी आबादी, ऐसे देश में संचार सुविधा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना कैसे संभव हो सकता है। ऐसे में भारतीय डाक विभाग ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और डाकघरों ने शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जोड़ने का काम किया। डाकिया केवल चिट्ठियां पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि वो गांव और समाज के जीवन का एक परिचित हिस्सा भी बन गया और कई जगहों पर वह सरकारी सूचनाओं, जरूरी दस्तावेजों और परिवार से जुड़े संदेशों का भरोसेमंद वाहक भी बन गया।

दोस्तों, डाक व्यवस्था की चर्चा हो और चिट्ठियों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक समय था जब चिट्ठियां लिखना अपने आप में एक कला हुआ करता था और साथ ही साथ लोगों को कागज पर अपने मन की बात लिखकर किसी पत्र के माध्यम से अपने किसी परिचित तक पहुंचवाना बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता था। डाकिया जब भी किसी घर के दरवाजे पर दस्तक देता था तो कई बार उसके हाथ में सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि किसी अपने की पूरी दुनिया होती थी। और आज भले ही संदेश मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देते हों, लेकिन हाथ से लिखे गए पत्र अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। वे भावनाओं, यादों और रिश्तों को सहेजने का माध्यम है। डाक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि उन्होंने उन लोगों को जोड़ने में मदद की जिनके पास आधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। दूर दराज के गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में डाक सेवाओं की भूमिका विशेष रही। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी आवश्यक संदेश जो है वो वस्तुओं और जो चीज़ें हैं वो सब कुछ डाक व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाने में सुविधा हुई। आज भी भारतीय डाक विभाग देश के व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहा है। ये नेटवर्क भारत की विविधता और विशालता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है।

वेल फ्रेंड्स, आज मोबाइल फोन जो है इसने भले ही हम सब की दूरी काफी कम कर दी हो, लेकिन अपने हाथों से लिखे गए पत्रों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, वो भूमिका या वो इम्पोर्टेंस आज भी है। अगर आज भी किसी का पत्र हमें प्राप्त होता है तो वो हमें कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मैसेजेस से। दोस्तों, किसी न किसी रूप में सूचना भले ही जल्दी ज़रूर पहुंच जाती हो, लेकिन मोबाइल के आने की वजह से चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा इजी होने लगी, और ज़्यादा इजी तब होने लगी जब मोबाइल के साथ साथ हमें मिलने लगा डेटा। जी हाँ, इंटरनेट के माध्यम से भी हमारा जो संचार का माध्यम था वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ने लगा, और ऐसे में न सिर्फ दूसरों से संपर्क करना बहुत आसान हो गया, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई भी लोगों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने लगी। तो दोस्तों, भारत में दूर संचार की सेवाओं का विस्तार जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट की ओर, यानी कि तरक्की की ओर बढ़ने का एक सीढ़ी ज़रूर बन चुकी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि इंटरनेट और डिजिटल संचार के इस नए युग में कई लोग ऐसे हैं जो आज भी पत्र लिखना बहुत पसंद करते हैं। वेल, ईमेल, मैसेजेस, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन होने के बावजूद भी डाक सेवाओं का अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान बना ही है, और ये हमने आज भी जोड़े रखे हैं। और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये आज से हमें नहीं जोड़े हैं, बल्कि तब से जोड़े हैं जब इसने इस क्षेत्र में, यानी जनसंचार के माध्यम के क्षेत्र में अपना पदार्पण किया था और पूरे देश को जोड़ा था एक सूत्र में। फिलहाल दोस्तों, आप सभी के लिए आज की वार्ता में बस इतना ही। हम बातें कर रहे थे डाक एवं संचार सेवाएं बदलते भारत में संचार के स्वरूप के विषय में। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में

0: सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में टीवीके ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेसेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनु कटारिया। Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in the New Delhi area.
2: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest off on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. All mail and express trains departing from their source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow will be cancelled at source. The Railways Ministry said that this decision has been taken in view of the anticipated severe road traffic congestion in areas around both the railway stations tomorrow. Delhi Metro Rail Corporation has informed that 57 metro stations will be closed from 9 p.m. today till tomorrow due to security reasons in the National Capital Region. These stations include Rajiv Chowk, Lok

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेस वे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
2: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
1: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी न्यू में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है, बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पराशर जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
1: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है? खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
3: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे, जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया, बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% यह सारा सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारे जो अमृत भारत से ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज रानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
1: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आएं और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 146,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
5: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल

0: शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
1: जी।
0: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दुरू हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है, हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेस वे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेलवे देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बनाते उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना। और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तो मिस्टर की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
2: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में केवल 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा है अनदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूँ, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं। हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए हैं, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में, जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं। और इससे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
2: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, ये सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पावर और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
3: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है।

0: और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक, भी फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और ये केवल धौलेरा की कहानी नहीं है, बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं, उन

0: एयरपोर्ट्स पे, अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
0: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
0: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना है, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी, कैंपागोड़ा,
0: हाँ, मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है, इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा, और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े, तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
2: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं, और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है, जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो, या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
1: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है, और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव में ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में, यानी इसी वर्ष, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति, और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
0: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बार से, कि कहीं से कहीं पहुंचना, तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
1: जी।
0: उससे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया, और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहाँ पे या तो समुद्र या वहाँ पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
1: जी।
0: अब वहाँ पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी, और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में, और उसमें आप परेशान होते थे
1: जी।
0: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कम्फर्ट लाया, कनेक्टिविटी

0: लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
1: जी,
0: आपकी चीजों को आसार कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का, और हमारी उसमें हम ये सब सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था। तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-300 किलोमीटर जाना पड़ता था उसका, समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
1: जी।
0: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है
1: जी,
0: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेल मतलब स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18

0: हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से, यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को, केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हो। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि ये जो रोपवे जो बनाएगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन, आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज, और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी, देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई, और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में, बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं, यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला, वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे कि लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए, और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है। और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दें, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि

0: आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा के इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:45 और आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण प्रस्तुत है आप सभी के लिए और दर्पण के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुत है एक नज़र, जिसके अंतर्गत आज हम पहले बातें करेंगे प्रादेशिक सेना दिवस के विषय में। 200 राष्ट्र सेवा के संकल्प से जुड़ा ये खास दिवस है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज हम बातें करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग की जो देश की सुरक्षा में योगदान देने के साथ साथ नागरिक जीवन और राष्ट्र सेवा के बीच एक अनूठा सेतु बनाता है, और ये है हमारी प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर को भारत में प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी वीर जवानों और अधिकारियों को समर्पित है जो समर्पण, साहस और सेवा भावना को सम्मान देने का अवसर देते हैं, साथ ही साथ जो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सुरक्षा और सहायता के लिए अपना योगदान देते हैं। तो दोस्तों, प्रादेशिक सेना भारतीय सेना का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसे नागरिकों को सैन्य सेवा का अवसर देने का उद्देश्य विकसित किया जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रादेशिक सेना अक्सर नागरिक सैनिकों की सेना भी कही जाती है और इसके सदस्य सामान्य परिस्थितियों में अपने नागरिक जीवन और पेशे से जुड़े रहते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ये खास दिवस आप सभी को मुबारक हो। उसके साथ साथ ही दोस्तों, आज यानी 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है एक खास दिवस, एक और खास दिवस, और वो है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस जो है ये प्रति वर्ष 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये खास समय दिवस जो है इसे मनाना बहुत ही आवश्यक है। भले ही बदलते समय के साथ साथ संचार के साधन भी बदल रही हैं, लेकिन डाक सेवा का महत्व आज भी कायम है और इस महत्वपूर्ण सेवा का योगदान जो है वो हमारे लिए हमारी तरफ से इसे सम्मान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिवस खास तौर पर मनाया जाता है इस सेवा को सम्मान देने के लिए। विश्व डाक दिवस जो है ये मनाने का जो निर्णय है वो लिया गया था, विश्व डाक दिवस को मनाने का निर्णय वर्ष 1969 यानी 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि विश्व डाक संघ के सम्मेलन में लिया गया था। और 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में आज के दिन यानी 9 अक्टूबर के दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में चुना गया और इस खास दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 7:08

41 मिनट और 55 सेकंड। और आप सभी को बता दें कि आज है शुक्रवार की शाम। शुक्रवार की शाम के अंतर्गत हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं विधि विधान और समाधान। और आपको बता दें कि ये खास जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंतर्गत हम किसी खास अधिनियम के विषय में करते हैं बातें। तो आज के कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 के विषय में। प्रकृति हमारी धरती की जीवन रेखा है और हरे भरे जंगल, कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत, रंग बिरंगे पक्षी और साथ ही साथ जंगल में विचरण करते वन्य जीव हमारी पृथ्वी की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी का बैलेंस यानी कि संतुलन भी बनाए रखते हैं। लेकिन प्रकृति की यह सुंदरता केवल देखने के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर हम जंगलों से बाघ, तेंदुए आदि जैसे जो इम्पोर्टेंट पशु हैं ये गायब हो जाए या फिर आसमान से पक्षियों की चहचहाट गायब हो जाए तो हमारा जो जीवन है वो तो सूना होगा ही। साथ ही साथ इस संकट को की वजह से हमारे धरती का जो बैलेंस है वो भी बिगड़ जाएगा। इसी संकट को समझते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई और इसी दिशा में भारत में वर्ष 1972 यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के इतिहास के विषय में अगर बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य जंगली पशुओं, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा करना तथा देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा को बनाए रखना था। इस कानून के आने से पहले अवैध शिकार, वन्य जीवों के अंगों का व्यापार और प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना अनेक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे थे और इसी चुनौतियों को समझते हुए इससे निपटने के लिए ये कानून जो है इसे बनाया गया। इस अधिनियम ने वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और वन्य जीवों से संबंधित अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई

दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित वन्य जीवों का शिकार सामान्य रूप से प्रतिबंधित है। कानून में निर्धारित विशेष परिस्थितियों और आवश्यक अनुमतियों के अलावा वन्य जीवों का शिकार करना दंडनीय है। इस प्रकार जो ये प्रावधान बनाया गया, इसके द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा ही मूल उद्देश्य था। साथ ही साथ आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना भी की गई और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की चेष्टा इनके माध्यम से की गई। इन क्षेत्रों में वन्य जीवों को प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने, भोजन प्राप्त करने और साथ ही साथ सुरक्षित वातावरण भी मिलता है। भारत के अनेक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बाघों, हाथियों, गैंडों, हिरणों और कई दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये है हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का जो इस कार्यक्रम में मैंने स्वागत किया था, वो किया था 7:45 पर, लेकिन अब समय हो चला है 7:53, और फिलहाल आप सभी से लेना है मुझे विदा। और चलते चलते आप सभी के लिए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म स्वदेश से आप सुनेंगे उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ में ये गीत।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমাচার সন্ধ্যা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गईं। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और
1: पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस

0: और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
6: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IT विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
7: सेमीकंडक्टर जर्नी,
8: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
7: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन
5: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
9: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल हुए हमलों में 3 सऊदी नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को 174 लोगों की जान बचाने के लिए इसराइल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान मिलेगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. Vance की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और

0: औपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने आज अदिस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेस्बोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार निवेश विकास परियोजनाओं बुनियादी ढांचे समुद्री सुरक्षा प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने आज अदिस अबाबा स्थित नेशनल पैलेस और संग्रहालय का दौरा किया। सोशल मीडिया पर दौरे की झलकियां साझा करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि संग्रहालय इथियोपिया की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को बखूबी दर्शाता है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि कल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में सऊदी अरब के 3 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इन हमलों में एयरपोर्ट की सुविधाओं और सऊदी एयरलाइंस के एक विमान को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरलाइंस ने बताया कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन चालक दल के सदस्य कैप्टन हमूद अली अल कलियथामी की मौत हो गई। इस बीच हुतियों द्वारा संचालित अल मसीरा टीवी ने सना और सदा में टेली कम्युनिकेशन सुविधाओं सहित कई जगहों पर हवाई हमलों की खबर दी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई में अमरीकी दूतावास ने नागरिकों से क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ज्यादा सतर्क रहने को कहा है और उड़ानों के रद्द होने एयर स्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा कि इन हमलों के तेजी से बढ़ने की आशंका है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका सहित अन्य सहयोगियों से मदद मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें खुफिया जानकारी साझा करना लक्ष्यों की पहचान करना और परिचालन योजना बनाना शामिल है। हूतियों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य यमन के पश्चिमी लाल सागर तट और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल मंदब जल डमरू मध्य के पास हूतियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के दौर में अपना बचपन बिताया। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1941 में डरबन में भारतीय तमिल मूल के माता पिता के घर जन्मी पिल्ले बाद में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली श्वेत महिला बनी। उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश और 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रहीं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की है कि कैप्टन मच्छर के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अधिकारियों के अनुसार विमान के सह पायलट ने कैप्टन मच्छर पर हमला किया और 170 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली। इस घटना के दौरान सह पायलट को काबू करने में मदद करने वाले इसराइल के 6 नागरिकों को भी उनके साहसिक कार्य के लिए इस पुरस्कार

से सम्मानित किया गया है। तंजानिया में आज सुबह एक यात्री बस और लकड़ी से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में लगभग 28 लोगों की मौत हो गई। मोरो गोरो क्षेत्र के अग्निशमन और बचाव दल के कार्यवाहक कमांडर के अनुसार यह हादसा मोरोगोरो दारसलाम राजमार्ग पर हुआ, जब बस दारसलाम से मवेया जा रही थी। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत आएगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार और निवेश के अवसर तलाशना है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई

0: Please stand by for the news from Delhi.
1: साथ में मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मधुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदी

0: ग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टाने चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakha Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Ragavetri Karagam TVK won the by-elections in Madurantakam and Dharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabam won Dharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP-NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
3: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
2: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi Police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit facility will remain closed at 45 metro stations from 9 p.m. tonight till tomorrow until further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. The Supreme Court has directed the centre and authorities to ensure that there is no complete suspension of Delhi Metro and Railway services in the national capital in view of the CJP protest scheduled for tomorrow. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and said that public transport services must continue in a regulated manner to minimise inconvenience to commuters. A delegation of opposition MPs met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening regarding allegations on functioning of the Election Commission. Talking to media after the meeting, Congress President Mallikarjun Kharge said they apprised the President about the alleged discrepancies in Special Intensive Revision or SIR exercise. He said the opposition leaders have demanded that EVMs be rolled back and elections be conducted using ballot paper. South African jurist of Indian origin Navaneet Navi Pillay has won the Nobel Peace Prize today for her contributions to promoting peace and international law. A former UN human rights chief and a judge at the International Court of Justice, Pillay grew up under apartheid and went on to build a career defending anti-apartheid activists and advancing human rights and equality. In cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi today to level the 5-match series at 1-1. Chasing 250 for victory, West Indies overhauled the target with 6 wickets in hand and 9 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
4: Akashvani Kolkata, Sanchita Prachar Tarange Anushthan Shunchen. মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে এখন হিন্দি ছবির গান। প্রথম গানটি আর পার ছবি থেকে গীতা দত্তের কণ্ঠে। গানটির গীতিকার মজরুহ সুলতানপুরি, সুরকার ও পি নায়ার।

0: दिल की उमंगे है जवान।
1: आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे है जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ। पमा पधा पगा सपा, दिल की उमंगे है जवान, गाइए।
0: दिल की उमंगे है जवान,
1: बहुत अच्छी,
0: रंग में डूबा है समा,
1: वाह वाह वाह।

0: एक बार और
1: तिलकी उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

देवजा खड़गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण घूषुणी परिघायुधा सौम्या।

स्वरूपस्थितया तवैतदप्याये कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये मोघवैष्णवी शक्तिर् अनन्त वीर्य विश्वस्य।

ताते स्तुति दद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी वंश्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे।

त्रिशूलचंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूर कुक्कुट वृजे।